0: ये नल्ला पाड़ रहा है
1: क्या
0: आ, तुम
1: तेरे मेरे
2: हाय रोहनी रोहनी इज वॉचिंग इंद्र बालजित ऑल्सो वॉचिंग थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन टू टुडेज वेस्ट इंडियन शो I'll break for a commercial, but then I'll be back to know a little bit of music.
3: For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.
4: Ask your provider for Cologuard.

आप सुन रहे हो इंडियन मेलोडी टाइम विथ योर होस्ट एंड दोस्त लेक प्रसाद। वादन तो डन फर्स्ट बाय द डेप्थ एट सतर्क